याने खटखटाए जा। You just keep knocking the door. One day it'll open up. अपने मालिक से उठ करके

मुयस्सर बालों पर होते तो मैं उड़कर पहुंच जाता, मुयस्सर बालों पर होते तो मैं उड़कर पहुंच जाता। दरे किस्मत के अपना आशियां उनका चमन होता। Oh Allah, if only I had wings, I too would have flown away to Madina Sharif.

टूटे सितम उसका शिकवा नहीं, चाहे बदले जमाना नहीं उसका गम, चाहे बदले जमाना नहीं उसका गम।